0: Mirchi, it's hot. Suren ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: Number 10.

ने वही दिल लगाया। और कभी कभी ना एक गाना हिट होने से पहले ही लोगों का बन चुका होता है, इंटरनेट पे, रील्स में, रैंडम लेट नाइट स्क्रोल्स में। और कुछ महीने पहले ऐसी ही दो आवाजें अचानक हर जगह सुनाई देने लगी थी, क्रिश मंडल एंड किशोर मंडल, दो भाई, नो बिग सेटअप, नो इंडस्ट्री लॉन्च, बस टैलेंट और एक अजीब सी ऑनेस्टी। और मैं खुद इन दोनों को सोशल मीडिया पे फॉलो करता हूँ एंड इनका एक कवर तो अलग ही लेवल पे चला गया था।

See, that's the thing. Perfect नहीं है, polish भी नहीं है, लेकिन इस गाने में वो feel है, और शायद इसलिए लोग इनसे connect कर गए. And फिर Bollywood enter हुआ. Song को scale मिल गया, stars आ गए, gloss आ गया, बादशाह आ गए. And suddenly जिन दो लड़कों की वजह से ये गाना चला, वो अपने ही गाने में background में खड़े नजर आए, like extras. And that felt strange. और थोड़ा सा दुख भी हुआ. नॉट बिकॉज सक्सेस गलत है, ऑफ कोर्स नहीं है यार, लेकिन कभी कभी इंडस्ट्री टैलेंट को एलिवेट करती है और कभी कभी उसे डेकोरेट कर देती है. इंटरनेट ने उन्हें स्टार्स बनाया था, बॉलीवुड ने उन्हें एस्थेटिक बना दिया है. लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बिकॉज रियल कनेक्शन इवेंचुअली अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है. और अब एक और शादी के बाद के चक्करों वाला गाना, नंबर 9 पे, फ्रॉम है जवानी तो इश्क होना है. दिस इज व्याह करवा दो जी, यू आर ऑन द मिर्ची टॉप 20.

मैं और तू नंबर 8 और इस हफ्ते मैं सुरेंद्र सुंदरम और तुम और पूरा इंटरनेट रेड कार्पेट्स पे था। पहले द मेट गाला और अब द कैन फिल्म फेस्टिवल। ऐश्वर्या राय बच्चन स्टेयरकेस की मालकिन जैसे हमेशा से रही हैं। There's Alia Bhatt, Aditi Rao Haidri, Jacqueline Fernandez, and of course influencers, जो फुल अटेंडेंस में होंगे, no absentees. कैन, जो कभी वर्ल्ड सिनेमा का सबसे बड़ा स्टेज हुआ करता था, अब विजिबिलिटी का ओलंपिक्स बन गया है। कौन ट्रेंड हुआ, कौन मीम बना, कौन रील्स पे छा गया, और ये भी सच है, कई लोग वहाँ फिल्म प्रमोट करने नहीं जाते, खुद को प्रमोट करने जाते हैं। देखो मैं जज नहीं कर रहा, 2026 में अटेंशन भी एक करेंसी है, और जिस दुनिया में 15 सेकंड की रील किसी को ओवरनाइट सेंसेशन बना सकती है,

वहां रेड कार्पेट भी कंटेंट बन जाता है। बस इतना कहना था, स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन के बाद सर्टिफिकेट मिलता था, यहाँ ब्रांड डील्स मिलते हैं। वो बीच में जो आपने सैयारा सुना, जस्ट टू रिमाइंड यू, दैट वाज गाना नंबर 7। एंड जो लोग एक्चुअली कुछ फील करते हैं, एक्चुअली कुछ क्रिएट करते हैं, वो यहाँ है इस काउंटडाउन पे हर हफ्ते। नंबर 6 पर है विशाल मिश्रा एंड उनकी दीवानियत। नंबर 6।

0: Mirchi, it's hot. Suren ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: Number 5.

वाओ, और ऑनेस्टली डेविड धवन का नाम आते ही एक पूरा 90s यूनिवर्स एक्टिवेट हो जाता है। आई एम सरीन एंड 90s की बात हो रही है तो उसी दौर में एक कंपोजर थे जो बॉलीवुड के रूल बुक पे चल ही नहीं रहे थे, बेजू शाह। एंड यू नो व्हाट, 90s का बॉलीवुड मेलोडी पे चल रहा था। मेरे

विजू शाह आ गए। सडनली म्यूजिक से रोमांटिक नहीं रहा, स्टाइलाइज्ड हो गया, ड्रामेटिक हो गया, थोड़ा डेंजरस हो गया। एंड देन 1997 में भी सीन थोड़ा सिमिलर था।

0: रूम की लाइटिंग ही चेंज हो गई। दैट वॉज द विजू शाह इफेक्ट। उस वक्त उनका म्यूजिक लाउड लगता था, आज विंटेज कूल लगता है। और शायद इसलिए ओटीटी शोज लाइक बैट्स ऑफ बॉलीवुड, फिल्म्स लाइक धुरंधर, क्रिएटर्स सब फिर से उनकी तरफ जा रहे हैं, क्योंकि विजू शाह गाने नहीं बना रहे थे, एटमोस्फियर बना रहे थे, माहौल बना रहे थे। एंड सच ये है मिलॉर्ड, बॉलीवुड फाइनली उनके साउंड के साथ कैच अप कर रहा है। What I'm going to play you next is one of the coolest title track of the 90s. It still sounds relevant even in 2026. This is Gupt. This is by Biju Shah.
1: Top 20 Rewind. Yeah!

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
0: मिर्ची इट्स हॉट सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: नंबर थ्री

Duhidasda has climbed number 2 and now suddenly the conversation gets much, much bigger. It's me, Suren, और आज मैं आपको एक किताब के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ. बात है 2010 की अमीश त्रिपाठी और उनकी लिखी हुई किताब The Immortals of Melhua, शिवा ट्रिलॉजी, उसका पहला हिस्सा. और जब मैंने ये किताब पहली बार उठाई तो मैं बहुत बहुत अंदर चला गया और सच कह रहा हूं बाहर ही नहीं निकल पाया. ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये एक पूरी दुनिया थी, एक सिविलाइजेशन, एक कॉन्फ्लिक्ट और एक इंसान जो भगवान बन जाता है. और जब आप इस किताब को पढ़ते हैं आप सिर्फ शब्द नहीं पढ़ते, आप देखते हैं, आप सुनते हैं, आप महसूस करते हैं, आप वहां मौजूद होते हैं. और फिर करण जौहर ने इस किताब के राइट्स खरीद लिए. सालों तक कुछ नहीं हुआ, नो फिल्म, नो अपडेट, नो नथिंग. और फिर 2024 में अमीश त्रिपाठी ने कंफर्म किया राइट्स वापस आ गए हैं. मैं हैरान नहीं हुआ क्योंकि ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा था, इतना कॉम्प्लेक्स था, इतनी रिलीजियस सेंसिटिविटी थी कि अगर आपकी विजन और आपकी एग्जीक्यूशन में एक भी चूक होती ना तो दुनिया आपको माफ नहीं करती. एंड अब खबर है, एंड इट्स नॉट कंफर्म येट, कि रणवीर सिंह धुरंधर की कामयाबी के बाद इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ने वाले हैं. और मैं जानता हूं कि आप क्या पूछना चाहते हैं, क्या रणवीर सिंह ये रोल कर सकते हैं, क्या बॉलीवुड इस फिल्म को जस्टिस दे सकता है. लेकिन ये सवाल ही गलत है यार. असली सवाल ये है कि क्या कोई भी फिल्म, कोई भी डायरेक्टर, कोई भी बजट कभी वो दुनिया बना सकता है जो आपने अपने दिमाग में बनाई थी जब आपने वो किताब पहली बार पढ़ी थी. शिवा ट्रिलॉजी द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुआ डिजर्व टू बी मेड, लेकिन सिर्फ तब जब कोई फिल्म मेकर इतना ब्रेव हो कि वो अपनी विजन को हजारों लोगों की इमेजिनेशन से ऊपर रख सके. अभी तक वो बंदा आया नहीं था लेकिन शायद अब आ चुका है. इस हफ्ते नंबर 1 पे वो गाना है, वो फिल्म है जिसके बारे में भी हमने कुछ ऐसा ही कहा था, यार धुरंधर इतनी बड़ी हो जाएगी 13 हफ्तों के बाद. वो लोग कहां हैं, धुरंधर कहां हैं और शरारत कहां है, आप वो खुद देख लो. नंबर 1 आदित्य धर, धुरंधर, शरारत, 13वां हफ्ता. नंबर 1.

0: शरारत 13 हफ्ते और नंबर 1। एंड सच ये है कि इस गाने की जर्नी देखकर एक बात समझ आ जाती है कि हिट्स आते रहेंगे, लेकिन कभी कभी एक गाना सिर्फ चार्ट बस्टर नहीं बनता, वो पूरे वक्त का साउंड ट्रैक बन जाता है, और शायद शरारत वही गाना है। किसी के साथ ये था इस बार का मिर्ची टॉप 20। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, दिस इज सरेन ओवर एंड आउट।
1: के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। आर रेडियो मिर्ची, रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट। मिर्ची।

0: Mirchi, it's hot.
1: Yeah. I like the way you move right there.

Mitchie. It's hot.

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप। अब बारी है हफ्ते के हॉटेस्ट पॉप काउंटडाउन की। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। हफ्ते के टॉप 10 गानों में एक नई एंट्री है, हमारा 90s 2000s का इंडी पॉप क्लासिक है ऑल दिस एंड मोर। तो सीधा शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की। गाना नंबर 10 पर एक नई एंट्री है, गाने का नाम है छोरी। मिका सिंह एंड दया द रैपर का है गाना। उसके बाद मिट्टा रॉर का शीशा पिछले हफ्ते से 4 पोजिशन नीचे ड्रॉप हुआ है। मिट्टा रॉर की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स, मिट्टा रॉर एंड स्वरा वर्मा की आवाज में शीशा इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। Enjoy.
0: Number 10.

0: स्वरा वर्मा मिटर और की आवाज, मिटर और की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स, गाने का नाम है शीशा, दिस वीक ऑन गाना नंबर 9।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची
0: पर। दिस इज द गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका एंड दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। @RJKanika ऑन इंस्टाग्राम पर जाओ, मुझे फॉलो करो, कोई गाना सजेस्ट करना हो, कोई बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। गाना नंबर 9 पर हमने जो गाना सुना मिट्टा रोर की आवाज में शीशा, पता है वो 2 साल पहले रिलीज हुआ था। बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के मिट्टा ने गाना अपलोड कर दिया एंड धीरे धीरे खुद अपने आप सोशल मीडिया रील्स बनाए उस पे, गाने के बारे में कॉन्वर्सेशंस करते रहे एंड 6 महीने बाद वो गाना ब्लो अप हो गया। उसके बाद कंसिस्टेंटली लोग उस गाने के साथ जुड़ते रहे, सो मच सो दैट कि 2 साल बाद इस गाने की म्यूजिक वीडियो बनी, ये रिलीज हुई एंड नए लोगों को इतना पसंद आया दैट हमारे चार्ट्स में पिछले 7 हफ्तों से ये गाना है। यही टेस्टिमनी होती है किसी गाने की कि आप कभी भी कहीं से भी सुने आप पहचान जाए उस गाने को। पिछले हफ्ते हमने आपको एक गाने का एक इंट्रो म्यूजिक सुनाया था, आपको गेस करना था ये कौन सा गाना है। लिसन टू इट वंस अगेन। Lots and lots of right answers, but some wrong answers as well. The correct answer is Vaaste by Dhwani Bhanushali and Nikhil D'Souza, साल 2019 का ये गाना। आज भी इतना प्यार है इस गाने के लिए लोगों के दिल में। कुछ लोगों ने तो बिल्कुल ही गलत गेस किया, पहला नशा तो ये दूर दूर तक साउंड नहीं करता है, बट आई हैव गॉटन सो मेनी रिस्पॉन्सेस सेइंग पहला नशा, एक कुड़ी। जिन्होंने भी गलत आंसर किया है, टाइम टू रिडीम योर सेल्फ, इंडी पॉप को इसकी बारी है, अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। मैं बादशाह का एक गाना आपके लिए प्ले करने वाली हूँ, एक इंस्ट्रूमेंटल पीस है, म्यूजिक सुन के बताना है गाने का नाम क्या है। लिसन टू इट वेरी केयरफुली। आरजे कनेक्ट ऑन इंस्टाग्राम पर आके बताओ ये म्यूजिक कौन से गाने में है। नाउ बैक टू द काउंटडाउन, अगले वाले गाने की बारी। गुरु रंधावा का गाना, गाने का नाम है वोग, पिछले हफ्ते से 2 पोजीशन ऊपर जम करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 8। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।
1: नंबर 8।

इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 98.3 98.3 मिर्ची इट्स हॉट गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची नंबर 7

0: दिलजीत दोसांझ की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है डीलर। पिछले हफ्ते से दो पोजीशन ऊपर जंप करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उससे पहले हमने सुना कोक स्टूडियो भारत का गाना, गाने का नाम है ए अजनबी, आदित्य रिखारी, रावट और कुटले खां की आवाज में। ए अजनबी 4 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, दिस वीक ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो हेलो, स्वागत है आपका, दिस इज गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। अभी के अभी जाओ @RJKanika ऑन इंस्टाग्राम पर, मुझे फॉलो करो। कोई गाना सजेस्ट करना है, कोई बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। इफ यू थिंक अबाउट द इंडी पॉप स्टार्स फ्रॉम 2000s एंड 2010, द पंजाबी पॉप स्टार्स जैसे दिलजीत दोसांझ हो गए, उन्हें हमने उनके बड़े गानों के थ्रू डिस्कवर किया। बेसिकली जब म्यूजिक लेबल्स ने उन्हें डिस्कवर किया, तब हमने उनके गानों को डिस्कवर किया। बट इफ आई हैव टू टॉक अबाउट द लास्ट 4-5 ईयर्स, कॉन्टेंट डिस्कवरी का सबसे बड़ा इंजन बनता जा रहा है, एंड म्यूजिशियंस आर्टिस्ट इस कॉन्टेंट गेम में बेटर होते जा रहे हैं विद एवरी डे। एंड द न्यू वेव ऑफ पॉप स्टार्स आर दोस जो सोशल मीडिया के जरिए अपना कनेक्शन बढ़ाते हैं, लेकिन अपनी ऑनेस्टी और सॉन्ग राइटिंग के थ्रू अपना म्यूजिक कनेक्शन बढ़ाते हैं। वन ऑफ सच आर्टिस्ट व्हिच आई फील इज डूइंग सो वेल एंड विल कंटिन्यू टू डू वेल इज कॉल्ड जीनी। देहरादून की एक यंग सिंगर सॉन्ग राइटर, लेट नाइट अपलोड्स, बहुत ऑनेस्ट सॉन्ग राइटिंग, वो अपने फैंस के साथ ऑर्गेनिकली ग्रो हुई है। इफ यू लुक एट हर सोशल मीडिया, यू विल सी दैट जो लोग उन्हें फॉलो करते हैं वो बहुत इन्वेस्टेड रहते हैं। दैट जीनी ने इस गाने को जब लिखा तो उसके पीछे व्हाट वाज शी गोइंग थ्रू, इट्स लाइक वो डायरी एंट्री करती हैं एंड हर फैंस आर इन्वॉल्वड इन इट। उनका एक गाना है कॉल्ड नादानिया, व्हिच इज अबाउट लॉस, ग्रीफ एंड एक्सेप्टेंस ऑफ दैट लॉस। जब वो उस गाने को प्रमोट कर रही थी, शी वेंट अहेड एंड शी शेयर्ड विद हर ऑडियंस दैट अगर आपने कभी कोई लॉस फेस किया है एंड आप अभी तक उसे ओवरकम नहीं कर पाए हो, शेयर योर स्टोरीज विद मी। एंड सो मेनी फैंस पोर्ड देयर हार्ट्स, उनके कॉमेंट्स में अपनी बहुत पर्सनल स्टोरीज उन्होंने उनके साथ शेयर करी। दैट्स वॉट रियल कनेक्शन इज। वो हमेशा ऐसे छाती फाड़ के, ड्रम्स बजा के, सुपर स्टार की तरह नहीं होता है, वो बहुत ऑर्गेनिक एंड ऑनेस्ट होता है। उनके इंटरव्यूज में, उनके गाने में एक चीज बार बार रिपीट होती है, दैट शी वांट्स अ म्यूजिक टू नॉट साउंड परफेक्ट बट वेरी ह्यूमन, एंड ह्यूमंस आर फ्लॉड। दैट्स व्हाट मेक्स हर सो रिलेटेबल, कि जैसी वो ऑनलाइन है अपने गानों में भी वैसी ही है। शी इज हैविंग अ फैंटास्टिक रन, क्लब हाउस रूम से उन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत करी, सेल्फ प्रोड्यूस्ड डेमोज, सोशल मीडिया में दोज लेट नाइट फ्रेगमेंट्स, धीरे धीरे सोल्ड आउट शोज, एंड शी हेडलाइन वन ऑफ द बिगेस्ट म्यूजिक फेस्टिवल लॉलापालूज़ा अर्ली दिस ईयर। नाम याद रखो, नाम है जीनी। रेडियो सेट की वॉल्यूम बढ़ाओ, आई एम गोना प्ले हर सॉन्ग कॉल्ड फीका फीका व्हिच फीचर्स चार दिवारी इन द म्यूजिक वीडियो। जीनी एट हर बेस्ट, दिस इज फीका फीका प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।

0: Man oh man, word by word, it feels that she is really feeling her song. Jeannie ki awaaz unki composition, gaane ka naam hai Fika. Ye gaane sunte hi lagta hai that Jeannie is not just another independent artist. She's one of those artists of this generation that wants to grow with the new audience. At RJ Kanik on Instagram par aao, koi aise naye independent artist hain jo aapne discover kare hain, humse aage share karo and we might feature them and their songs next week. Now back to the countdown, agle wale gaane की बारी. दिलजीत दोसांझ एंड सिया का गाना, गाने का नाम है रांझा, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होके इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 5. यू आर लिस्टिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनका. एंजॉय.
1: नंबर 5.

0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इट्स हॉट के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 10.

वहीं दिल लगाया। और कभी कभी ना एक गाना हिट होने से पहले ही लोगों का बन चुका होता है, इंटरनेट पे रील्स में, रैंडम लेट नाइट स्क्रोल्स में। और कुछ महीने पहले ऐसी ही दो आवाजें अचानक हर जगह सुनाई देने लगी थी, कृष मंडल एंड किशोर मंडल, दो भाई, नो बिग सेटअप, नो इंडस्ट्री लॉन्च, बस टैलेंट और एक अजीब सी ऑनेस्टी। और मैं खुद इन दोनों को सोशल मीडिया पे फॉलो करता हूँ एंड इनका एक कवर तो अलग ही लेवल पे चला गया था।

0: See, that's the thing. Perfect नहीं है, polished भी नहीं है, लेकिन इस गाने में वो feel है, और शायद इसलिए लोग इनसे connect कर गए.
1: And फिर Bollywood enter हुआ. Song को scale मिल गया, stars आ गए, gloss आ गया, बादशाह आ गए. And suddenly जिन दो लड़कों की वजह से ये गाना चला, वो अपने ही गाने में background में खड़े नजर आए, like extras. And that felt strange. और थोड़ा सा दुख भी हुआ. नॉट बिकॉज सक्सेस गलत है, ऑफ कोर्स नहीं है यार, लेकिन कभी कभी इंडस्ट्री टैलेंट को एलिवेट करती है और कभी कभी उसे डेकोरेट कर देती है. इंटरनेट ने उन्हें स्टार्स बनाया था, बॉलीवुड ने उन्हें एस्थेटिक बना दिया है. लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बिकॉज रियल कनेक्शन इवेंचुअली अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है. और अब एक और शादी के बाद के चक्करों वाला गाना, नंबर 9 पे, फ्रॉम है जवानी तो इश्क होना है. दिस इज व्याह करवा दो जी, यू आर ऑन द मिर्ची टॉप 20.

Tuhi Dasda has climbed number 2 and now suddenly the conversation gets much, much bigger. It's me, Suren, और आज मैं आपको एक किताब के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ. बात है 2010 की अमीश त्रिपाठी और उनकी लिखी हुई किताब The Immortals of Melhua, Shiva Trilogy, उसका पहला हिस्सा. और जब मैंने ये किताब पहली बार उठाई तो मैं बहुत बहुत अंदर चला गया और सच कह रहा हूं बाहर ही नहीं निकल पाया. ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये एक पूरी दुनिया थी, एक सिविलाइजेशन, एक कॉन्फ्लिक्ट और एक इंसान जो भगवान बन जाता है. और जब आप इस किताब को पढ़ते हैं आप सिर्फ शब्द नहीं पढ़ते, आप देखते हैं, आप सुनते हैं, आप महसूस करते हैं, आप वहां मौजूद होते हैं. और फिर करण जौहर ने इस किताब के राइट्स खरीद लिए. सालों तक कुछ नहीं हुआ, नो फिल्म, नो अपडेट, नो नथिंग. और फिर 2024 में अमीश त्रिपाठी ने कंफर्म किया राइट्स वापस आ गए हैं. मैं हैरान नहीं हुआ क्योंकि ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा था, इतना कॉम्प्लेक्स था, इतनी रिलीजियस सेंसिटिविटी थी कि अगर आपकी विजन और आपकी एग्जीक्यूशन में एक भी चूक होती ना तो दुनिया आपको माफ नहीं करती. एंड अब खबर है, एंड इट्स नॉट कंफर्म येट, कि रणवीर सिंह धुरंधर की कामयाबी के बाद इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ने वाले हैं. और मैं जानता हूं कि आप क्या पूछना चाहते हैं, क्या रणवीर सिंह ये रोल कर सकते हैं, क्या बॉलीवुड इस फिल्म को जस्टिस दे सकता है. लेकिन ये सवाल ही गलत है यार. असली सवाल ये है कि क्या कोई भी फिल्म, कोई भी डायरेक्टर, कोई भी बजट कभी वो दुनिया बना सकता है जो आपने अपने दिमाग में बनाई थी जब आपने वो किताब पहली बार पढ़ी थी. शिवा ट्रिलॉजी द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुआ डिजर्व टू बी मेड, लेकिन सिर्फ तब जब कोई फिल्म मेकर इतना ब्रेव हो कि वो अपनी विजन को हजारों लोगों की इमेजिनेशन से ऊपर रख सके. अभी तक वो बंदा आया नहीं था लेकिन शायद अब आ चुका है. इस हफ्ते नंबर 1 पे वो गाना है, वो फिल्म है जिसके बारे में भी हमने कुछ ऐसा ही कहा था, यार धुरंधर इतनी बड़ी हो जाएगी 13 हफ्तों के बाद. वो लोग कहां हैं, धुरंधर कहां हैं और शरारत कहां है, आप वो खुद देख लो. नंबर 1 आदित्य धर, धुरंधर, शरारत, 13वां हफ्ता. नंबर 1.

0: शरारत 13 हफ्ते और नंबर 1। एंड सच ये है कि इस गाने की जर्नी देखकर एक बात समझ आ जाती है कि हिट्स आते रहेंगे, लेकिन कभी कभी एक गाना सिर्फ चार्ट बस्टर नहीं बनता, वो पूरे वक्त का साउंड ट्रैक बन जाता है, और शायद शरारत वही गाना है। किसी के साथ ये था इस बार का मिर्ची टॉप 20। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, दिस इज सरेन ओवर एंड आउट।
1: के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स

Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.

0: Avicii, It's Hot.
1: दो तोले की मुंदरी ला दे, तीन तोले का कंगना।

Mirchi. It's hot.

Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.

Alrighty then, this is your girl Priscilla with you. सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स और अब वेदर का हाल चाल. So here's the forecast before you confidently leave home. Right now the temperature is sitting at a cool 68 degrees Fahrenheit with mostly cloudy skies. लेकिन plot twist है कि 69 degrees feel होने वाला है temperature. सुबह के 7 बजे तो काफी sunny माहौल था. लेकिन if you've been waiting to be the main character like Bollywood movies who walks out of the house with a song, आज is your डे. आज के दिन का हर एक मोमेंट बड़ा ही अच्छा जाने वाला है. एंड नाउ लेट्स फाइंड आउट द टेम्परेचर रेंज. आज जाने वाला है 66 डिग्री फारेनहाइट से लेकर हाई अप टू 94 डिग्री फारेनहाइट. और बरसात का सीन ये है कि 0 मिलीमीटर रेन इज एक्सपेक्टेड जस्ट लाइक लास्ट 24 आवर्स. अगले 24 आवर्स में भी कोई बरसात नहीं होने वाली है. एंड कम्पेयर टू येस्टरडे, टूडे इज अ बिट हॉटर. येस्टरडे पीक्ड एट 89 डिग्री फारेनहाइट एंड टूडे इज फ्लेक्सिंग एट 94 डिग्री फारेनहाइट. तो समर रियली entered the chat uninvited. So, इसी बात पर लेयर के प्लेयर बनो और बहुत सारा पानी पियो. Keep yourselves hydrated और साथ में मिर्चीदार vibes carry करो. Just like me, बोले तो Priscilla on Mirchi Mornings. और अभी फटाफट से मुझे फॉलो करो Insta और X पर. मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. एंड WhatsApp पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033 647244. Stay tuned and stay hot.

Mirchi, it's hot. 98.3 Mirchi, it's hot.

0: खत्म।
1: गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में, एंड यू वाइबिंग विद मी ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और आज की डेट यानी कि 18th of May, हिस्ट्री में क्या हुआ था, लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले 1804 नेपोलियन बोनापार्ते बिकेम एम्परर ऑफ फ्रांस। 1912 में इंडिया रिलीज श्री पंडालिक, कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन मोशन पिक्चर्स इन मुंबई। फास्ट फॉरवर्ड टू 1974, इंडिया कंडक्टेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कॉल्ड स्माइलिंग बुद्धा इन पोखरण, राजस्थान। देन केम 1980, माउंट सेंट हेलेंस इरप्टेड इन वॉशिंगटन, यूएस। 2009 में श्रीलंका सिविल वॉर ऑफिशियली केम टू एन एंड आफ्टर डेकेड्स। इट वाज अ ह्यूज हिस्टोरिकल टर्निंग पॉइंट फॉर द रीजन। तो एक ही दिन में कितना सारा ड्रामा, एम्बिशन एंड साइंस ने सर्वाइव किया था, और आज के दिन हमारी लाइफ चॉइसेस तो सर्वाइव कर ही सकती है। मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में, सुन रहे हो तो मुझे मिर्ची मॉर्निंग्स पर। अब जाकर देखो मुझे, मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, एंड व्हाट्सएप करो मुझे 9033 मिर्ची पर, दैट्स 9033647244। फिलहाल मिर्ची दर बैंगर्स का टाइम, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

Hey there, good morning. You're hanging with Priscilla on Mirchi Mornings. Aur ye suno, journalist Saurabh Dwivedi has officially entered his main character era and made his acting debut in Netflix's Kartavya alongside Saif Ali Khan. Lekin social media ne kya kya? Full savage mode on kar diya hai. People are trolling his performance, saying his dialogue delivery sounded less like a villain and more like someone's reading the 9 PM bulletin. Yani ki main villain kam and namaskar, aaj ke mukhya samachar. Zyada lag rahe the wo. Ek ex-user ne to ye tak lik diya hai ki from Ambarish Puri to this, what a downgrade. Oof, internet really wakes up every day and chooses violence over everything else. लेकिन honestly, switching careers publicly takes guts. आजकल तो लोग LinkedIn bio change करने से पहले भी 4-5 बार सोच लेते हैं. And somewhere this is like peak desi energy, right? Engineer becomes DJ, doctor becomes food blocker, journalist becomes actor, and politicians are doing stand-up comedy. एंड मम्मी फिर भी कहती है बेटा गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भर दिया होता ना तो आज कहीं और ही होते. ऑल्सो कैन वी अप्रिशिएट सैफ अली खान जिन्हें इनकी एक्टिंग झेलनी पड़ी हो. बट इस पर से एक सवाल आया मेरे दिमाग में, व्हाट डू यू थिंक, पीपल शुड बी काइंडर ऑनलाइन या फिर अगर थोड़ा बहुत मजाक में ट्रोल कर भी दिया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. स्लाइड इन टू माई DMs ऑन इंस्टा एंड एक्स, मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, लेट मी नो व्हाट यू थिंक. एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे hard.

0: ये दिल।
1: Hey there, good morning. मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में and this is मिर्ची mornings. और 5 मिनट और वाली गैंग जो है उसको ऑफिशियली उठाने आ चुकी हूँ मैं। यहाँ पर चाय जो है इमेजिनरी नहीं है, बिल्कुल गर्मा गर्म है, जस्ट लाइक द गॉसिप कमिंग अप लेटर इन द शो। एंड ऑनेस्टली यार, देसी एक्सपैट लाइफ जो है ना, वो क्या लाइफ होती है। सुबह अमेरिका का वेदर कन्फ्यूज करता है और दोपहर में मम्मी के कॉल्स कन्फ्यूज करते हैं और शाम आते आते खाने में क्या खाना है ये कन्फ्यूज करता है। बट डोंट यू वरी, टूडे आई एम सर्विंग फुल ऑन गुड वाइब्स, बॉलीवुड बीट्स, स्पाइसी कॉन्वर्सेशन एंड ढेर सारी मिर्ची की मस्ती। अगले कुछ घंटों तक तुम्हारा दिन तो सेट हो ही गया है और मॉर्निंग्स अगर अच्छी जाए तो पूरा दिन अच्छा जाता है। तो फिलहाल बड़ा बच्चे मुझे फॉलो कर लो, मेरा नाम है मिर्ची प्रिस ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल बैक टू बैक मिर्ची दैट बैंगर्स का टाइम है, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।
2: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

रेडियो मिर्ची के साथ मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: This is something.

गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में सुन रही हूँ मिर्ची मॉर्निंग। एंड नाउ इट्स टाइम टू नो व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। सबसे पहले एन इंडियन रेस्टोरेंट ओनर नेम्ड मनीष कुमार, हु हैज लिव्ड इन जापान फॉर ऑलमोस्ट 30 इयर्स, ब्रोक डाउन आफ्टर हिज बिजनेस वीजा रिन्यूअल गॉट रिजेक्टेड अंडर स्ट्रिक्टर इमिग्रेशन रूल्स। ही नाउ मे हैव टू शट द रेस्टोरेंट हीज रन फॉर 18 इयर्स। नंबर टू पर हार्ट ब्रेकिंग अपडेट कमिंग इन फ्रॉम इंडिया, मैसेजेस फ्रॉम ट्विशा शर्मा, अ नोएडा वुमन फाउंड डेड जस्ट मंथ्स आफ्टर मैरिज, हैव सर्फेस्ड व्हेन शी रिपोर्टेडली टोल्ड अ फ्रेंड आई एम ट्रैप्ड। हर हस्बैंड एंड मदर in law have reportedly been booked as investigations continue. And number three per cricket say CSK and RR both have the same wins, same points and even the same NRR, but CSK is still above RR on the points table because apparently their NRR, that's net run rate, is microscopically better beyond three decimal places. And that's it for Mirchi Hour Ka 3 with me Priscilla on Mirchi Mornings. Mujhse connect karo Insta or X par, mera handle hai Mirchi Pris, and WhatsApp par mera number hai 9033 Mirchi, that's 9033 647 244. Stay tuned and stay hot.

गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में, एंड यू ट्यून इन टू मिर्ची मॉर्निंग्स। एंड ये वो जगह है जहाँ पर हम साथ में हंसते हैं इन्फ्लेशन पर, लेकिन साथ साथ में रोना भी आ जाता है कभी कभी टैक्सेस कट होने पर। सो लिसन टू दिस मैडनेस कमिंग स्ट्रेट आउट ऑफ हैरी। एक वायरल वीडियो इज ब्लोइंग अप ऑनलाइन शोइंग अ यंग मैन्स अपार्टमेंट ऑन द 7th फ्लोर विद एब्सोल्युटली नो एलिवेटर, एंड टू रीच ही हैज टू क्रॉस 134 स्टेयर्स। नाउ द अपार्टमेंट रिपोर्टेडली कॉस्ट अराउंड 600 euros a month, and the internet is collectively shocked because imagine carrying groceries up 134 stairs after work. Bhai, by the time you reach home, tumhari ice cream to chai ban jayegi, right? And honestly, jo desi expat ne is video ko dekha hoga na, wo keh raha hoga, wait, New York, Toronto, Mumbai and Bengaluru landlords already trained us for this level of suffering, don't you think? The video sparked a lot of conversations around crazy urban rent prices and tiny living spaces in big cities worldwide. Basically, the global housing market said you want sunlight, space and affordability. In teenon mein se ek hi mil sakta hai bhai, ya phir kabhi kabhi teenon hi nahi milte hai. But low key, that guy's cardio must be unbelievable. Forget gym membership yaar, 130 4 स्टेयर्स ऊपर नीचे करते करते मेरी बॉडी टाइगर श्रॉफ से अच्छी बन जाती। टेल मी दो, व्हाट्स द वाइल्डेस्ट अपार्टमेंट फीचर यू हैव एवर सीन, या तुम्हारे घर में ऐसा कौन सा अद्भुत चमत्कारी एरिया है? शेयर इट विद एवरीवन। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033647244। राइट नाउ मिर्ची दर बैंगर्स लगाती हूं मैं तुम्हारे लिए। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

गुड मॉर्निंग माय बर्थडे बेबीज, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में ऑफ कोर्स ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और यहाँ पर एक्सक्लूसिवली मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कि आज तुम अपना बर्थडे किसके साथ मना रहे हो। लेकिन उसके पहले मे योर बैंक बैलेंस ग्रो फास्टर देन योर स्क्रीन टाइम। एंड आज तुम्हें इरिटेटिंग रिलेटिव्स के फोन्स आए ही ना, वो भूल रहे हैं तुम्हारा बर्थडे। तो सबसे पहले आज तुम्हारे साथ है कॉमेडी क्वीन टीना फे, एंड ऑल्सो यू शेयर इट विद जॉर्ज लूकस, the creator of Star Wars, and singer Jack Johnson, and international star Chow Yun-Fat. So if it's your big day today, celebrate loudly, eat the cake, forget about the calories, post your selfies, and send me shoutouts on your birthday. Mera handle name hai Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS, and WhatsApp number hai 9033 Mirchi, that's 9033-647244. Stay tuned and stay hot.

0: Hey there, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में and it's time for सोना एंड चांदी का रेट अपडेट only on मिर्ची mornings.
1: Rajos wishes everyone happy and healthy morning. Gold trading at $4,700 per troy ounce. $4,700 per troy ounce के साथ आज सुबह गोल्ड के प्राइस ट्रेड कर रहे हैं. आज गोल्ड का प्राइस लॉक करके 0% इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट, 12 इंस्टॉलमेंट में बिना किसी हिडन फी के 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी, 18 कैरेट कलरलेस डायमंड ज्वेलरी, GI सर्टिफाइड नेचुरल डायमंड. राज ज्वेल्स की टीम के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करते हुए घर लेके जाएं और 12 किश्तों में पैसे दें. कैसे? आइए राज ज्वेल्स के साथ रिस्पॉन्सिबली गोल्ड में इन्वेस्ट करें. थैंक यू. हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल.
0: एंड देयर यू हैव इट, एक्सक्लूसिव गोल्ड एंड सिल्वर का रेट अपडेट मिर्ची मॉर्निंग्स पर तुमने सुना. मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में. कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. फिलहाल मिर्ची दार गानों की बारी है. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे

Good morning, guys. You're back with Priscilla on Mirchi Mornings, and it's time for your favorite segment of the show. यहाँ पर हम पता करते हैं around the world क्या चल रहा है. सबसे पहले टू यूएस नेवी EA-18G ग्राउलर फाइटर जेट्स कोलाइडेड मिड एयर ड्यूरिंग द गन फाइटर स्काइज एयर शो इन आइडाहो. वीडियोस शोड द जेट्स कोलाइडिंग एंड एक्सप्लोडिंग आफ्टर क्रैशिंग टू द ग्राउंड, बट थैंकफुली ऑल फोर क्रू मेंबर्स सेफली इजेक्टेड. नंबर टू पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप शेयर्ड AI जनरेटेड इमेजेस शोइंग हिमसेल्फ वॉकिंग विद अ कैप्चर्ड एलियन एंड अनदर वन प्रेसिंग अ जायंट रेड बटन इन स्पेस विद स्पेस फोर्स रिटन ऑन इट. एंड फाइनली इंडियन PM Narendra Modi visited the Afsluitdijk Dam in the Netherlands. A massive water management project, experts say, could inspire Gujarat's proposed Kalpasar project. The project is being studied for ideas around freshwater storage and large-scale dam systems. And that's it for Mirchi Hour Ka 3 for this hour. Main hoon Priscilla tumhare saath mein. Insta aur X par mera handle hai Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS. And WhatsApp par mera number hai 9033 Mirchi. That's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

whether social life ho ya work life ho, people are noticing you. Basically, LinkedIn aura Bollywood ka confidence. Lucky color is orange, lucky number is 4. Gemini yani Mithun Rashi. Venus is shifting vibes, but the sun is coming in hot. Translation, stop doom scrolling and go out there. Attention is waiting for you. Lucky color is lemon yellow, lucky number is 27. Cancer yani Kark Rashi. Soft heart, strong intuition today. Relationships improve when you stop overthinking every K in texts. Lucky color for you is off-white. Lucky number is 11. Leo yani ki Sinha Rashi. Career stars are shining brighter than Times Square tonight. People want your ideas, your vibe and your honesty. साथ साथ में तुम्हारा कॉन्फिडेंस फ्री में मिलता है. लकी कलर इज क्रिमजन रेड. लकी नंबर इज नंबर 1. वर्गो यानी कन्या राशि. योर ब्रेन इज स्पॉटिंग डिटेल्स एवरीवन एल्स मिसेस टुडे. बेसिकली एफबीआई की एनर्जी है बट विद बेटर स्किन केयर. लकी कलर फॉर यू इज सेज ग्रीन. लकी नंबर इज 22. एंड दैट्स इट फॉर योर राशि जोन नंबर 1. राशि जोन नंबर 2 लेकर आती हूँ मैं थोड़ी सी देर में. तब तक तुम सुनो मिर्ची देयर बैंगर्स ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. मेरा नाम है प्रिसला. इंस्टा एक्सपर्ट मुझे ढूंढो. मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस. दैट इज MIRCHIBRIS and WhatsApp number hai 9033 Mirchi. That's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: सुबह उठ के बैंक बैलेंस चेक कर लिया है तो आप क्यों ना पता करें राशिफल क्या कहता है। मैं प्रिसिला तुम्हारे साथ में ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स एंड लेट्स हेड टू राशि जोन नंबर वन।
1: मिर्ची राशि जोन।
0: It is Yane Mesh Rashi. Money moves looking strong today. New ideas can actually bring extra cash your way. Side hustle ka keeda active ho raha hai. Lucky color for you is electric green. Lucky number is 19. Taurus yani ki Vrushabh Rashi. Big boss energy today, babe.

Hey there, Mirchi Mornings, but this is your girl Priscilla signing off क्योंकि अब मेरे जाने का time हो चुका है. लेकिन the Indian rupee has hit a fresh all-time low now at 96.20 against the US dollar. The rupee reportedly crossed the 96 mark for the first time recently and has weakened further amid global tensions and rising oil prices. Meanwhile, Brent crude oil climbed above $110 a barrel after reports of an attack on the UAE nuclear plant. And हर देसी एक्सपर्ट जो मुझे फिलहाल सुन रहे हैं अपने दिमाग में ना मेंटल मैथ कर रहे होंगे कि अच्छा तो इंडिया ट्रिप का बजट और इमोशनल डैमेज दोनों इंक्रीज हो गया है अब. तो तुम जब तक अपनी चाय कॉफी ब्रेकफास्ट को फिनिश करो, मैंने शो फिनिश कर दिया है. अब जा रही हूँ मैं, टाटा बाय बाय बोल के मिलूंगी तुम्हें कल सेम टाइम सेम प्लेस सेम फ्रीक्वेंसी. तब तक के लिए तुम बने रहो मिर्ची पर. बी गुड एंड बी काइंड. ऑफकोर्स खाओ पियो ऐश करो मजे करो मुझे याद करो. और अगर मुझे मिस करोगे तो मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS. एंड व्हाट्सएप जो तुम कभी करते नहीं हो मुझे 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. दैट्स माई नंबर ऑन व्हाट्सएप. एंड राइट नाउ स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: आपने कभी लस्सी में पाइनएप्पल स्क्वॉश या पाइनएप्पल एसेंस मिलाकर पिया है?
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirchi. और अगर आपने कभी ऐसा weird combo try नहीं किया है ना, तो I would say there's always a first time. Actually ना, ये combo मैंने अपनी मासी के यहाँ एक शाम बचपन में पिया था, और बस तब से लेकर अब तक this is my go-to drink to refresh myself. और क्या है ना कि पाइनएप्पल एज अ फ्रूट भले ही हमारी लाइफ पे उतना हिट ना हुआ हो, लेकिन एज अ फ्लेवर बड़ा हिट है यार। मतलब बचपन से ही पाइनएप्पल पेस्ट्रीज, पाइनएप्पल केक्स हो या फिर पाइनएप्पल वेफर्स, ये हमने इतने चखे हैं कि जब ये लस्सी में स्वाद आया ना, तो आई गेस वो बचपन वाली याद, वो वॉर्म्थ का सुकून इस फ्लेवर को और हिट बना गया। अभी एक बात बताओ, आप पाइनएप्पल लस्सी को लेकर कन्विंस हुए या मैं थोड़ा और बोलूं? हो गया ना, तो चलो फिर आपसे शेयर करने के लिए बातें और भी हैं। फिलहाल मिडडे मोहब्बत की गाड़ी को गियर में डालती हूँ और आपसे कहती हूँ, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: शाहरुख खान ने कहा है कि उन्होंने आज तक अपनी डेब्यू फिल्म नहीं देखी है, बिकॉज़ ही डजंट वांट टू वॉच हिज फर्स्ट एंड लास्ट फिल्म।
0: मिर्ची वीसीआर।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And the film Deewana, starring Rishi Kapoor, Divya Bharti and Shahrukh Khan, 1992 की second big hit थी, first being Beta। इस फिल्म के लिए पहले सनी देओल को साइन किया गया था, but when he walked out of the film, तो धर्मेंद्र suggested कि एक लड़का है जो सीरियल्स में काम करता है, and शाहरुख खान को इस फिल्म के लिए फिर साइन किया गया। दो शाहरुख खान अपनी पहली फिल्म को लेकर बड़े ही अप्रिहेंसिव थे कि उन्हें ये फिल्म करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि ये ए ग्रेड फिल्म है या बी ग्रेड फिल्म है। लेकिन जब ऋषि जी वाज साइंड इन फॉर अ रोल इन द फिल्म, ही बिकेम श्योर ऑफ द फिल्म। और क्योंकि फिल्म मेकर्स इस बात को लेकर श्योर नहीं थे कि शाहरुख के कंधों पर ये फिल्म चलेगी या नहीं, सो दे गेव ऋषि जी एन इम्पोर्टेंट रोल एंड अ बिगर रोल। हालांकि फिल्म का टाइटल शाहरुख खान के कैरेक्टर पर ही था, और इस फिल्म के रिलीज होने के बाद और हिट होने के बाद शाहरुख खान ने प्रोड्यूसर्स की खूब टांग खींची और उन्हें हर इंटरव्यू में घसीटा। लेकिन क्यों, बताऊंगी आपको इन अ वाइल। अभी के लिए कमिंग अप द नेक्स्ट ट्रैक, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: शाहरुख खान की डेब्यू फिल्म दीवाना की रिलीज और हिट के बाद शाहरुख खान मूवी के प्रोड्यूसर से बहुत नाराज थे।
0: मिर्ची चैट रूम।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। नाउ द सीन वाज कि शाहरुख खान के जो पेमेंट्स और ड्यूज थे वो पूरे नहीं किए गए थे और कई सालों तक उन्होंने फिल्म के प्रोड्यूसर्स को अपने इंटरव्यूज के जरिए खूब सुनाया, खूब ताने मारे, जस्ट टू टीच देम अ लेसन। जहां शाहरुख खान वाज एंग्री फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज इन द फिल्म, ऑन द अदर हैंड शूट के दौरान ऋषि जी वाज सो मच इन लव विद द सॉन्ग ऐसी दीवानगी, सो मच सो दैट कि वो चाहते थे कि ये गाना वो शूट करे। लेकिन फिर प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर सबको मिलकर ऋषि जी को कन्विंस करना पड़ा कि सर, ये गाना इस कैरेक्टर के लिए ही लिखा गया है, आपका कैरेक्टर दीवाना नहीं लेकिन शाहरुख खान का कैरेक्टर दीवाना सही। और तब जाके ऋषि जी को समझ में आया कि अच्छा चलो ठीक है, शाहरुख खान ओनली शुड शूट द सॉन्ग। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Sadly, we lost उस्ताद जाकिर हुसैन, जिनके बारे में आज तो हमें पता है कि वो कितने टैलेंटेड थे, लेकिन आपको पता है उनसे बचपन में हमारा इंट्रोडक्शन कैसे हुआ था?
0: मिर्ची पे टीवी दर्शन।
1: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And the first time जो मैंने उस्ताद जाकिर हुसैन साहब को देखा था ना, that was in a चाय पत्ती का एड, जिसमें he gives a performance और एंड में किसी को टोकते हुए कहते हैं, वाह उस्ताद नहीं, वाह ताज बोलिए जनाब। और ये लाइन ना हमारे लिए वायरल थी। इनफैक्ट आज भी हम इस लाइन का इस्तेमाल करते हैं। ये वो टाइम था जब मैंने उन्हें पहली बार देखा था और फिर जाना कि वो क्या है। एंड इयर्स लेटर आज उनके जाने के बाद उन्हें याद करते करते ना ये ख्याल ऑल ऑफ अ सडन क्रॉस्ड माय माइंड एंड आई रियलाइज्ड कि ये जो किस्सा है ना जो आज भी मेमोरी में इतना फ्रेश है कि लगता है कि कल ही की तो बात है, इसे गुजरे भी कितना वक्त हो गया यार। और इसी के साथ आज विद उस्ताद जाकिर हुसैन द तबला माइस्ट्रोस पासिंग अवे एक एरा खत्म हो गया यार। बट यू नो व्हाट, He is still going to continue living in our hearts forever. You tune in with me, Sara. Aapki 90s ki yaadon ka pitara on Mirchi. It's hot.

0: कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में दिस गाना फ्रॉम द फिल्म यस बॉस इज डेडिकेटेड टू ऑल दोस सिंगल्स हुव गिवन अप होप कि वो लोग कभी प्यार ढूंढ पाएंगे अपने लिए। अरे चिल यार, एक दिन आप भी अपने पार्टनर के लिए यही गाना गाने वाले हो कि एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे। मैंने सोचा न था
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
0: Hi, this is me, Sara. आपकी 90s की यादों का पिटारा। और देखो यार, अभी तो पार्टनर इन क्राइम ढूंढने की बारी आ चुकी है मेरी। और मेरे पार्टनर इन क्राइम होते हो आप जब मुझे खेलना होता है मान ना मान करो गानों की पहचान। सो बेसिकली आज के वो दो गाने जिनकी धुनें मैंने आपस में मिक्स कर दी हैं ताकि आप उन्हें पहचानने की कोशिश कर पाओ आर दीज टू।

और अब बस सिंपल सा काम करना है जो हम हर रोज करते हैं, और वो ये है कि आपको मुझे डीएम करना है इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा, आपका नाम, आपके शहर का नाम और इन दोनों गानों के नाम लिखकर मुझे भेज दो। एंड जस्ट इन केस अगर आप सोच रहे हो कि मैं आपको कोई हिंट दे दूं, तो चलो ठीक है यार, इन दोनों ही गानों में वो एक्ट्रेस है जिनके आते ही सबको कह दिया जाता है Guess who? Stay tuned with me, Sara. आपकी 90s की यादों का पिटारा on Mirchi. It's hot.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: If you remember, तो एक फिल्म आई थी सुष्मिता सेन, सलमान खान और दिया मिर्जा की। फिल्म का नाम था तुमको ना भूल पाएंगे। बड़ी क्यूट सी फिल्म थी। हालांकि फिल्म का कॉन्सेप्ट वॉज पुनर्जन्म, जो कि वही पुराना कॉन्सेप्ट है जो सीरियल्स में और पुरानी फिल्मों में इस्तेमाल किया गया है। और इस फिल्म में एक बड़ा ही खूबसूरत गाना है, उस गाने का कॉन्सेप्ट भी कहीं से उठाया गया है।
2: मिर्ची, टग्स ऑफ फिल्मिस्तान।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और इस फिल्म में एक बड़ा ही प्यारा सा गाना था, और वो गाना था ये
3: बेखुदी दीवानगी तुम्ही से हर मेरी जाने जाना।
1: Well, the point is कि this गाना, इसकी धुन has been copied from an English song जिसका कि नाम है Time After Time, which was sung by Cyndi Lauper. And the गाना goes this way. And if you're wondering कि इस गाने को कंपोज किसने किया था, तो that was साजिद एंड वाजिद। बड़े दिनों बाद कोई नई जोड़ी का नाम निकल के आया है इस कट कॉपी पेस्ट गैंग में। पर ना, you know the usual names जो फ्लोट करते रहते हैं। और अगर आपके पास भी 90s या early 2000 की ऐसी कोई मूवी या फिर कोई गाना है जिसके बारे में आपको पता लगा है कि ये कहीं से कट कॉपी एंड पेस्ट है, तो DM करो on my Instagram handle which is Mirchi Sara and stay tuned to Mirchi, it's hot.

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: कभी प्रियंका चोपड़ा और शाहिद कपूर भी हम साथ साथ हैं गाया करते थे।
2: नब्बे की गप्पे।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड देयर वाज अ टाइम जब इन दोनों ने ही ये बात पब्लिकली नहीं कही थी कि they are dating each other, लेकिन बातें बहुत थी यार इन दोनों के रिश्ते की। मूवीज भी साथ साथ कर रहे थे, साथ में अच्छे दिखते भी थे। एंड एक्चुअली राय का पहाड़ तो तब बना जब प्रियंका चोपड़ा के घर पर एक सुबह पड़ी आईटी वालों की रेड। एंड गेस दरवाजा किसने खोला? कहा जाता है कि इट वॉज शाहिद कपूर। और डिफेंस में आज भी प्रियंका चोपड़ा यही कहती है कि सुबह सुबह जब मेरे घर पे रेड पड़ेगी और अगर जस्ट अक्रॉस द लेन या प्रोबेबली जस्ट इन द बिल्डिंग या अराउंड मेरा कोई दोस्त रहता है तो मैं उसे फोन करके क्यों नहीं बुलाऊंगी यार। आई कांट बी डीलिंग विद द होल सिचुएशन ऑल बाय माय सेल्फ। मेड सेंस लेकिन नॉट रियली। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: डियर फोन डायरेक्टरी,
2: यादों को चिट्ठी।
1: आज गूगल के जमाने में याद है मुझे कैसे तुम किसी जमाने में हमारी गूगल हुआ करती थी और कितनी जरूरी थी तुम लोगों की पहचान के लिए। अगर कोई तुम्हारे पीले पन्ने पर ना होता तो वो इस दुनिया में अपना होना खोता। माचिस की डिब्बी बेचने वाले से लेकर घर बेचने वाले सभी तुम्हारे होने से होते थे। मुझे याद है कि कैसे अगर मम्मा की फोन नंबर्स वाली डायरी खो जाती थी ना तो वो दोस्तों और रिश्तेदारों के नंबर तुम में से ही ढूंढती थी। इनफैक्ट उस वक्त तुम FB का काम भी किया करती थी, पुराने बिछड़े रिश्तों को मिलाती थी। अगर किसी से सालों से ना मिले हो और उन्हें ढूंढना हो ना तो तुम थी ना मदद के लिए। तुम्हारे होते हुए इट वॉज सेल्डम कि वी वुड फील लॉस्ट। और हमारे नाम का पहला अल्फाबेट कितना इम्पोर्टेंट है ये तुम्हें खोल कर समझ में आ जाता था। बड़ों के लिए तो तुम बड़े काम करने के काम आती थी, लेकिन हम बच्चों के लिए भी तुम काफी काम की निकल जाती थी। तुम्हें पता है, तुम्हें उठाकर हम एक बड़ा पढ़ा लिखा गेम खेला करते थे। एक बच्चा तुम में झांक कर एक नाम पढ़ता और दूसरे का काम होता उस नाम को ढूंढना तुम्हारे हष्टपुष्ट साइज में। हालांकि इट इजंट अ टफ टास्क नाउ, लेकिन तब की अकल के हिसाब से जब सही जवाब मिल जाता था ना तो लगता था कि जाने कौन सा पहाड़ चढ़ लिया है हमने। आज के टाइम पर पता है तुम्हें, किताबनुमा चीजें बड़ी कम है, सब कुछ फोन पर आ चुका है। और अगर फोन गायब हो जाए ना तो होश भी गायब हो जाते हैं अच्छे खासे चलते फिरते इंसान के। आई एम श्योर तुम देखोगी ना आज के इंसान को तो एक हल्का सा ठहाका तुम्हारे मुंह से जरूर निकलेगा। आज दुनिया सतरंगी है, लेकिन तुम्हारे पीले रंग को आज भी याद करती तुम्हारी सारा, जो यहाँ के अलावा इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी बाय द नेम मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: लता जी और उदित जी की आवाज में दिस एपिक गाना फ्रॉम द फिल्म DDLJ जो कि कैसेट के साइड बी का तीसरा गाना है।
0: मिर्ची 90s कैसेट।
1: हो गया है तुझको तो प्यार सजना, यार इस बात से कैसे कोई करेगा इनकार सजना। दिस गाना इज सच अ ब्यूटीफुल ट्रैक। इनफैक्ट DDLJ का तो पूरा का पूरा एल्बम ही बड़ा हसीन था। ऑफ कोर्स जब लोकेशन इतनी खूबसूरत है, एक्टर्स इतने खूबसूरत थे, तो फिर गाने तो ऑफ कोर्स अच्छे लगने ही थे ना हमको। लेकिन पता है क्या, DDLJ की एक बड़ी खास बात थी और वो ये कि DDLJ देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने शादी करी थी, लव मैरिज करी थी, बिकॉज हर किसी को प्यार में इतना ज्यादा यकीन होने लग गया था ना। वही वाली बात जो यश जी कहा करते थे, कम फॉल इन लव, एवरीबडी डिड फेल इन लव। एंड मैंने कहीं ये पढ़ा था कि देयर वाज दिस रिसर्च वर्क जो उस टाइम पर किया था, जिससे कि ये पता लगा था कि यू नो DDLJ के बाद बहुत सारे लोगों को ये एहसास होने लगा था कि उन्हें उनका राज मिल गया है या सिमरन मिल गई है, एंड दे फाउंड देयर स्पेशल समवन दे वांटेड टू स्पेंड देयर लाइफ फॉरएवर विद। क्योंकि इस फिल्म ने एक नई डेफिनेशन दे दी थी यार प्यार को। किसको पता था कि एक हसीन सफर पर आपको जिंदगी का हम सफर मिल जाएगा, क्योंकि एक जमाने में यार इस बात पर यकीन करना इतना आसान थोड़ी ना हुआ करता था। जब तक लड़के को जाना नहीं, पहचाना नहीं, उसकी फैमिली के बारे में जाना नहीं, तो प्यार कैसे कर लेगा। ये वो जमाना था जहाँ पर अरेंज मैरिज से निकल कर सब नया नया लव मैरिज वाला सिनेरियो एक्सप्लोर कर रहे थे, और DDLJ ने तो पूरे द्वार खोल दिए थे सबके लिए। चलो जी, विद दिस जाते जाते आपके लिए यही खूबसूरत गाना लगाती हुई जा रही हूँ और आपसे कहती हूँ हम है रही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। बाकी आप अपना अच्छा खासा ख्याल रखिएगा और यहाँ के अलावा मुझे ढूंढ लीजिएगा ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

उदास सा गाना जिसमें अमिताभ बच्चन साहब उदास से मुंह फुलाए से घूमते रहते हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और जैसा कि मैं अक्सर कहती हूँ, उदासी में भी एक अलग खूबसूरती होती है। अगला जो गाना हम सुनने वाले हैं उसमें भी अमिताभ बच्चन साहब ऐसे मुंह फुलाए घूमते रहते हैं। त्रिशूल फिल्म का गाना। वैसे आपको पता है जो त्रिशूल टाइटल है, ये यश चोपड़ा साहब ने राइटर सलीम जावेद को दिया था कि भाई ये टाइटल है, इस पे फिल्म लिख दो। और जब इन्होंने फिल्म लिखी तो यश चोपड़ा साहब को समझ नहीं आया कि ये स्टोरी टाइटल से कैसे रेलेवेंट है। तो उन्होंने समझाया कि इस फिल्म के जो मेन कैरेक्टर्स हैं, एक बाप, उसका एक जायज बेटा, एक नाजायज बेटा। वैसे अगर आप सोचें ना तो बहुत मायनों में त्रिशूल सिग्निफाइज द स्टोरी ऑफ द फिल्म, कि कैसे अमिताभ बच्चन एक वेपन ऑफ डिस्ट्रक्शन बनके अपने ही बाप से बदला लेते हैं, कैसे अपनों के दिए घाव एक त्रिशूल के जैसे उनके सीने में उतर जाते हैं, कैसे पास्ट प्रेजेंट को अफेक्ट करता है। सो दैट वे बहुत सारी सिग्निफिकेंस है। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारू के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3
0: मिर्ची इट्स हॉट। पुरानी जीन्स चारू के साथ सिर्फ मिर्ची पर

ज्यूल थीफ की शूटिंग करते करते प्रेम पुजारी की स्क्रिप्ट लिख डाली देवानंद साहब ने। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। जी, जब ज्यूल थीफ फिल्म की शूटिंग नेपाल में हो रही थी तब देवानंद साहब ने वहाँ पे दूरबीन से चाइना का बॉर्डर देखा और उनको ऐसा कुछ दिखा कि एक सिपाही छोटे से पपी के साथ, डॉगी के साथ खेल रहा है। तब उन्होंने सोचा कि ऐसा कुछ सीन भी फिल्म में जरूर होगा। और अगर आप प्रेम पुजारी फिल्म देखें तो उसमें एक छोटा सा डॉग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि कहानी कैसे आगे बढ़ती है। हम भी आगे बढ़ते हैं पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए।

0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची।
1: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट, मिर्ची इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स चारू के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: 90s के गाने की लाइंस हैं कि मेरे जागने से पहले हाय रे मेरी किस्मत सो जाती है, मैं देर करता नहीं देर हो जाती है। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। शबाना आजमी जी ने एक बार एक पुराने इंटरव्यू में शेयर किया था कि जिन एक्टर्स के साथ वो काम करती थी कौन लेट लतीफ होते थे, कौन टाइम पे होते थे, सुनिए।
1: There was a time when I was working with Sanjeev Kumar in a film by Gulzar Saab called Namkeen, and in the evening I was working in a film called Jwalamukhi with Prakash Mehra and Shatrughan Sinha. So, ये तो लिखा हुआ था कि 7 बजे की शिफ्ट है, लेकिन संजीव कुमार फिल्म सिटी में 12:30 बजे से पहले नहीं पहुंचा, और फिर 2 बजे की शिफ्ट में शत्रुघ्न सिन्हा 5:30 बजे से पहले नहीं पहुंचे। बच्चन साहब एंड शशि कपूर फर्स्ट पर्सन टू अराइव ऑन द सेट, दीज वर द टू पीपल हु वुड जस्ट, आप अपनी घड़ी, नाउ दीज वर पीपल यू एडमायर्ड, एंड देन इट इज टू यू हुम यू चूज टू एम्युलेट।
0: क्या बात है भाई, चलिए अभी देर नहीं करते, टाइम हो गया है बहुत ही ब्यूटीफुल गाना सुनने का। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, सुनते रहिए।

भाई कुछ दिन पहले ना मैं टीवी पर नसीब फिल्म देख रही थी और मेरे ऐसे मतलब होश उड़े जा रहे थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। मतलब लिटरली मैं फिल्म देखते हुए सोच रही थी, अरे इसमें ये भी है, अरे इसमें ये भी है, अरे इसमें ये भी है, कितने सारे एक्टर्स। और मनमोहन देसाई साहब की ना इस बात में तो दाद देनी पड़ेगी भाई, मल्टी स्टारर फिल्म्स वो जो बनाते थे उसमें इतने सारे एक्टर्स होते थे। सोचिए आप, इतने सारे एक्टर्स को मैनेज करना, हैंडल करना, उनके ईगो क्लैशेस, उनके टैंट्रम्स, उनकी पंक्चुअलिटी, जो भी उनकी डेट्स वगैरह, वो सब हैंडल करना, उफ कितना मुश्किल हो जाता होगा। ये नसीब फिल्म की मैं बात कर रही हूँ, इसमें अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, हेमा मालिनी, रीना रॉय, ऋषि कपूर, किम, और फिर विलन्स में सब भर रखे हैं भाई, अमजद खान, कादर खान, अमरीश पुरी, प्रेम चोपड़ा, शक्ति कपूर, फिर प्राण साहब भी हैं, कितने सारे कैरेक्टर एक्टर्स हैं। हैट्स ऑफ टू दिस गाय मनमोहन देसाई साहब, या जो भी उस टाइम पे मल्टी स्टारर फिल्म्स बनाते थे, सब दाद के काबिल हैं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।

1981 की फिल्म दर्द का ये गाना। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। नक्श लियालपुरी साहब ने इसे लिखा है। वैसे इनका असली नाम जसवंत राज शर्मा था, नक्श लियालपुरी इनका पेन नेम था। इनकी एक और गजल मैं पढ़ रही थी, तुझको सोचा तो खो गई आँखें, दिल का आईना हो गई आँखें, खत का पढ़ना भी हो गया मुश्किल, सारा कागज भिगो गई आँखें, कितना गहरा है इश्क का दरिया, इसकी तह में डुबो गई आँखें, दो दिलों को नजर के धागे से एक लड़ी में पिरो गई आँखें, नक्श आबाद क्या हुए सपने और बर्बाद हो गई आँखें। वाह वाह वाह वाह। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। एक और सुंदर गजल सुनेंगे, शहरयार साहब की लिखी हुई, उमराव जान फिल्म से। सुनते रहिए मिर्ची।

मोहम्मद रफी साहब की आवाज में ये गाना मिर्ची सुन रहे हैं आप। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। आपको पता है मोहम्मद रफी साहब ने अपना जो लास्ट गाना रिकॉर्ड किया था उसकी लाइंस क्या थी? तेरे आने की आस है दोस्त, शाम फिर क्यों उदास है दोस्त, महकी महकी फिजा ये कहती है तू कहीं आस पास है दोस्त। 1981 में रिलीज हुई फिल्म आस पास का ये गाना है। ऐसा सुनने में आता है कि रफी साहब ने ये गाना अपनी डेथ के कुछ आवर्स पहले उसी दिन 31 जुलाई 1980 को ही रिकॉर्ड किया था। खैर, ये गाना रिकॉर्ड हुआ था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के लिए। और एलपी और रफी के सुपर्ब कॉम्बिनेशन का एक और गाना यहाँ पर सुनते हैं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: Mirchi, it's hot.
1: Purani Jeans with Charu, only on

0: 1972 की फिल्म गोरा और काला, जिसमें गोरा भी राजेंद्र कुमार बनते हैं, काला भी राजेंद्र कुमार बनते हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। जी, दो जुड़वा भाइयों की स्टोरी है जिनमें फर्क ये होता है कि एक गोरा होता है और दूसरा किसी डिसऑर्डर की वजह से काला। इस रोल के बारे में एक पुराने इंटरव्यू में सुनिए राजेंद्र कुमार साहब ने क्या कहा था।
1: गोरा और काला भी करने की वजह जो ये थी, वो टू डिफरेंट कैरेक्टर्स, एक काली का और एक गोरे, तो वो जो मौका था एज एन एक्टर वो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे काले का रोल बहुत पसंद था, उसको बहुत शौक से मैंने किया और पूरा पांव से लेकर सर तक काला बनना पड़ता था और 3-3.5 घंटे लगते थे। तो उसके बाद फिर जब गोरे की बारी आती थी तो 1-1.5 घंटा उसको साफ करने में लगता था, फिर गोरा बनना पड़ता था। खैर, तो बड़ा मजा आता था उसमें।
0: यार, पुराने जमाने में इनको ये सब करने में ज्यादा दिक्कत आती होगी ना, क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं थी इतनी, रिसोर्सेज नहीं थे, और उसी वजह से ना, क्योंकि अब हमको इतने इफेक्ट्स और CGI वाले सब चीजें देखने की आदत हो गई है, तो पुरानी फिल्मों में जब ये सब चीजें देखते ना, कई बार थोड़ी फनी भी लगती है। खैर, दोज वर द डेज। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

आपको पता है बप्पी दा ने, बप्पी लायरी ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का एक रिकॉर्ड भी बनाया था। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। ये रिकॉर्ड था एक ही साल में 33 फिल्मों के 180 गाने रिकॉर्ड करने का। यस, दिस हैपेंड इन 1986। इन 33 फिल्मों में 15 तो हिंदी फिल्में थी भाई, वो वैसी वाली फिल्में जो 80s में नहीं आई थी, मैं बलवान, इल्जाम, इंसाफ की आवाज, सिंहासन, मेरा धर्म, ऐसी फिल्में। फैक्ट्री लगी हुई थी भाई, फैक्ट्री, गानों पे गाने, गानों पे गाने निकल रहे थे। चलिए अभी जो गाना निकल कर आया है बप्पी दा का कंपोज किया हुआ, इट इज सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

जान के लाले बोला मुझको कोई बचा ले। चूहा आगे पीछे बिल्ली पीछे बिल्ली चूहा आगे पीछे बिल्ली पीछे बिल्ली चूहा आगे पीछे बिल्ली पीछे बिल्ली चूहा आगे आ।

उनकी लाइफ, ड्रंकड हस्बैंड, फाइटर वाइफ, बीवी बिगड़े, शौहर अकड़े, रोज के झगड़े, रोज के लफड़े, लफड़े झगड़े, अरे झगड़े लफड़े, लफड़े लफड़े झगड़े झगड़े लफड़े झगड़े झगड़े लफड़े, आ

जिंदगी बन गई भोली, कुंडी खोली हंस के बोली, जाने तमन्ना अंदर आओ, पहले तो कुछ खाओ आओ, फिर बिस्तर पे होंगी बातें, बड़े प्यार से कटेंगी रातें। शौहर चौंका, भूले से मैं, ये किसके घर आ गया यार, मेरी बीवी मुझे कभी भी दे नहीं सकती इतना प्यार। शौहर बिस्तर छोड़ के भागा और कुंडी ताला तोड़ के भागा, शौहर बिस्तर छोड़ के भागा, कुंडी ताला तोड़ के भागा, भागा रे भागा रे भागा रे भागा रे भागा। बोला देवी माफ कीजिए, मेरे साथ जरा इंसाफ।

दीजिए, मुझको अपने घर जाना है, वरना बीवी फिर मारेगी। उस दिन बीवी होश में आई, बंद हो गई सारी लड़ाई, नफरत हारी उल्फत जीती, लुटी खुशी फिर लौट के आई। अरे नफरत हारी उल्फत जीती, लुटी खुशी फिर लौट के आई। आई रे आई रे आई रे आई रे आई, पीना छूट गया, पीना छूट गया, बीवी ने इतना दिया प्यार, पीना छूट गया। फिर दोनों ऐसे मिले, फिर दोनों ऐसे मिले, प्यार में ही डूब गए। प्यार अगर मिले तो हर नशा है बेकार, जहां चारिया

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन मिर्ची।

1975 की फिल्म मौसम का ये गाना। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इस फिल्म में अपनी परफॉर्मेंस के लिए शर्मिला टैगोर जी को बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड मिला था। इस फिल्म के डायरेक्टर गुलजार साहब थे, और आपको पता है गुलजार साहब इस रोल के लिए पहले जरीना वहाब, जो तब नई नई थी, उनको कास्ट करने का सोच रहे थे। लेकिन शर्मिला टैगोर जी को जब इस फिल्म के बारे में पता चला तो उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि वो ये रोल करना चाहती हैं। और जिस तरह फिल्म का सब्जेक्ट था, गुलजार साहब को लगा कि कोई पॉपुलर एक्ट्रेस होगी तो फिल्म को बेचने में आसानी होगी, उसकी कमर्शियल वैल्यू ज्यादा होगी, इसीलिए फाइनली शर्मिला टैगोर जी को साइन किया गया। चलिए, दाने दाने पे होता है खाने वाले का नाम, रोल रोल अवार्ड अवार्ड पे होता है उसे पाने वाले का नाम। मेरा नाम है चारू, आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स और मिर्ची

पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर। पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन मिर्ची।

आय हाय हाय हाय, दो टके की नौकरी और लाखों का सावन, क्या कंपैरिजन बिठाया है मलिक साहब ने। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। वर्मा मलिक इस गाने के लिरिसिस्ट है, रोटी कपड़ा और मकान फिल्म का नाम, और ये जो गाना है ना, ये एक्चुअली फिल्म में जो मौसमी चैटर्जी का किरदार था उन पे पिक्चराइज्ड होना था, लेकिन उस टाइम वो सॉर्ट ऑफ फुल टाइम प्रेग्नेंट थी, तो जीनत अमान पर ये गाना पिक्चराइज हुआ। एंड अगर आप फिल्म देखें ना, तो जीनत अमान का जो किरदार है, उनका जो रोल है, उसके साथ ये गाना का जो मूड है, जिस तरह का ये गाना है, वो जाता नहीं है। चलिए अभी हम जाते हैं छोटी सी ब्रेक पे, फिर वापस आते हैं राइट पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची। हाँ।

0: पुरानी जीन्स चारू के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
2: मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन मिर्ची।

0: खयाम साहब की ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। आपको पता है खयाम साहब जब 16-17 साल के थे, ये मैं 1943-44 की बात कर रही हूँ, तब जब इन्होंने अपने घर में कहा कि ये फिल्मों में एक्टर बनना चाहते हैं, तब इनके साथ क्या हुआ एक पुराने इंटरव्यू में इन्होंने शेयर किया था।
1: एक्टिंग के लिए ये हुआ कि घर वालों ने हमें निकाल दिया और पिटाई भी हुई, लेकिन एक माहौल था घर में शायरी का एंड मौसीकी के रिकॉर्ड सुनना, शायरी और अदबी किताबें, कुतुबखाना, वो एक घर में माहौल था। लेकिन इसकी हमने सजा भुगती और घर निकाला, कहेंगे देश निकाला कहें, तो वो हमने सहा
0: जी। और घर से निकले तो पंजाब के राहों से होते हुए, लाहौर से होते हुए, लुधियाना से होते हुए बॉम्बे पहुंचे। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, सुन लेते हैं खयाम साहब की एक और ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन ऑन मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

हसीना मान जाएगी फिल्म का गाना। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इस गाने के राइटर का नाम है अख्तर रुमानी। अख्तर रुमानी साहब एक राइटर थे जिन्होंने कई फिल्मों की स्क्रिप्ट डायलॉग्स वगैरह लिखे हैं, कुछ गाने भी लिखे हैं जिनमें से एक ये गाना है। और अख्तर रुमानी साहब ना जो आइकॉनिक रेडियो प्रेजेंटर थे अमीन सयानी साहब, उनके दोस्त थे ये दोनों। सेंट जेवियर्स कॉलेज बॉम्बे में साथ में पढ़ते थे। इनफैक्ट इन्हीं के कंटेम्प्रेरीज थे, इन्हीं के साथ कॉलेज में जो थे, एक तो सिंगर महेंद्र कपूर साहब और डायरेक्टर विजय आनंद, देवानंद के भाई। ये चारों लोग सॉर्ट ऑफ एक ही बैच के आप कह सकते हैं। इसी बात पे आप भी अपने कॉलेज के स्कूल के दोस्तों को याद कीजिए। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, सुनते रहिए।

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: सब पैसे का चक्कर है बाबू भैया।
2: श्रुति श्रुति
3: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
1: मिर्ची पे ट्यून इन हो आप, और पूरा जमाना फिलहाल एक चीज पे अटका हुआ है, एंड दैट इज कैन फिल्म फेस्टिवल। इफ यू टॉक अबाउट द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री स्पेसिफिकली, कहाँ एक तरफ तारा सुतारिया का डेब्यू हो रहा है, कहाँ हमारे इन्फ्लुएंसर्स रेड कार्पेट वॉक कर रहे हैं, और हमारी मीडिया जो है वो भाई तारीफों के पुल बांधे जा रही है कि हमारी ये वाली फिल्म, वो वाली फिल्म, कई सारी फिल्म कैन फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर हो रही है। बट ऐसा कुछ नहीं है। कैन की सच्चाई ये है कि सिर्फ और सिर्फ दो फिल्म्स ऑफिशियल सिलेक्शन में शामिल हो पाई हैं। पहली मूवी है शैडोज ऑफ द मूनलेस नाइट्स, जिसको डायरेक्ट किया है मेहर मल्होत्रा ने, जो एक FTII ग्रेजुएट रही हैं। इट इज अ वेरी स्वीट स्पेशल फिल्म। वहीं दूसरी फिल्म जो इस लिस्ट में आई है, दैट इज अम्मा आर्यन। ये जॉन एब्राहम की अनरिलीज मलयालम फिल्म है। उसका रिस्टोरेशन फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन फिर से लेकर आया है कैन फिल्म फेस्टिवल में। एंड माइंड यू, दीज आर दी ओनली टू ऑफिशियल सिलेक्शंस। बाकी जो आप हल्ला सुन रहे हैं ना कि भैया फलाना फिल्म ढिमकाना फिल्म मार्केट में जा रही है, हाँ मार्केट में आप भी अपनी फिल्म लेकर जा सकते हैं, थोड़े पैसे देने पड़ते हैं ऑफ कोर्स, और वहां जो ऑडियंस है वो तो ओहो, लेट्स नॉट गेट देयर। सो या, फिल्मी दुनिया में हर दूसरी चीज सच हो ये जरूरी नहीं, बट इसका पर्दाफाश मैं करती हूँ ये जरूर होता है। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: न्यूयॉर्क में लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती है ना, प्लेन से देखा था।
2: शशि वो मैनहट्टन है।
1: मैनहट्टन
3: मैन आजमी हैट टोपी और मॉम व्हाट्स टैन इन हिंदी?
2: टैन मतलब वो धूप की छाप।